गावन तुदन पवन पाणी बह संतर गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदन चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुद

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती चौपाई।

सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा।

उपसरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए।

करो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन

रेत सेत कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभार।

जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वसत तजी

0: सुरहास सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड़ बिखाय बिखु खाई।

मन नाम सिमरत रहो। जब लग कट सास कीर्तन नाम सिमरत रहो। जब लग कट सास वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।

धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंधिव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदै चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सुवारती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदनो मोहे।

कहो नानक सब तेरी वडियाई। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार। श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮਹ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮਹ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਭਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗੰਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਿਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੋ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰਹ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਸ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਯਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸਹਿ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਤ ਚੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨੁਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੀ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਿਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ।
जेहे मार्ग एहो जात एकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ध्याईए, नानक गुरमुख परम गत पाईए, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक बिघन जह आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे बिश्राम, हो मैला मल कबहु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाईए साध कै संग, जेह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जी पैंड मह अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को ना सिंहानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जह महाभयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर का नाम उधरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन के बिरत विवेक, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग, हर का नाम जन की वड़ियाई, हर का नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजा हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन के उठस ताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त बोह करे, नानक जन संग के ते तरे, पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिदवस, संत प्रताप दुर्त सब नस, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, देखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग अभ्यास करम त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी है एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव, महा उदास पपी सरथी व, अगन माही होमत प्राण, कनक असु है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुट्टे, गर्भ गुमान ना मन ते हुट्टे, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल ना तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिख्या टरे, जल तोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कह होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतित बहु मूच, बहुत सियाणप जम का पो व्याप, अनेक जतन कर त्रिस्न ना त्रप, एक अनेक अगन नहीं बुझ, कोट उपाव दरगह नहीं सिझ, छूटस नाही उभ प्याल, मोहे व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम नान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोला सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांग, साध जना की सेवा लाग, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग एह हो मैं चोरे,
जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेरो नाउ निथावे को नाउ तेरा थाउ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव हो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जी घट वस हर नाम सलोक निर्गुनियार एयानिया सो प्रभ सदा समार जिनकी आत इस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूलते कवन दिष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन महजनह उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोगन भोजन सुख सूध बिरद पयाउ पर साख सैन मुख अपयाउ बैठ को दैन एहु निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तो नानक सीझै जे प्रसाद तरु पर सुख बसह सुत प्रात मीत बनिता संघसह जे प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाँव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूल अंध व्यापे नानक काड लेहो प्रभ आपे आद अंत जो रखन हार तिस स्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै ता स्यों मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सा सदा हजूरे ता को अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बसारै मुगध अजान सदा सदा यह पूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग खोटी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्धप प्रीत पसम संग होए अंधकूप मह पतित बिकराल नानक काड लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा कर दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छपस नहीं कछ कर छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह था जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो ओढ़ निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कही है तो समझे पोरा कहां बिसन पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तो ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै न चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो अपन कर करम तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोय न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी।

अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। एक पीना दे दस पीहर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ता को की जय। सद नमस्कार राजा कै मन लागा, प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साहु अपनी दे रास, खात पीत बरत आनंद उलास। अपनी अमान कछ बहु सहले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुत उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त तिस आज्ञा रखे, प्रभ की आज्ञा मान मथ। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक भांत माया के हेत, सरपर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिन सह ओह मन पछतावे। जो दिसे सो चल अनहार, लपट रहे होते हैं अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावे, नहेता को हाथ नावे। कहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटम सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असुवस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरहै। मिथ्या नेत्र पेखत पत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कोतावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभावह। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की यार जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम। तन तन ते जन जेह कट बस्यो, हर नाम नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हूँ गंढ लावत। जानन हर प्रभु पर बीन, बाहर पेख न कहू पीन। अवर उपदेश आप न कर, आवत जावत चन में मर। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जन, अपना किया पहमान। आप है आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय, लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहमे। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जिहि प्रसाद छति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिहि प्रसाद सुगंध तन लावह, तिसको सिमरत परम गत पावह। जिहि प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसह त्याय सदा मन अंदर। जिहि प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाठ, पह सिमरोह तिस रसना। जिहि प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जिहि प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह, तिसह त्याग कतवर लुभावह। जिहि प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पहर ता का जस गावी जय। जिहि प्रसाद तुझ सब को मान, मुखता को जस रसन बखान। जिहि प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावह, नानक पद सेति कर जावह। जिहे प्रसाद आरोग कंचन देही, लिवला बहुत इस राम स्नेही। जिहे प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावह हर हर जस कहत। जिहे प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जिहे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जिहे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे हे। जिहे प्रसाद आपूकन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिहे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी, मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जिहे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत सहत आई। ते सहत आए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रख है।
जिह प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जिह प्रसाद सुनहि करन नाद जिह प्रसाद पिखै बिसमाद जिह प्रसाद बोलहि अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चलहि जिह प्रसाद संपूर्ण फलहि जिह प्रसाद परम गत पावहि जिह प्रसाद सुख सहज समावहि ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो हो गुर प्रसाद नानक मन जागो हो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनोह बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस हजान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावह साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया अपहु कछु न किन्हु लया जित जित लावहो तित लगहै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना के अचर्ज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिट अभिमान साध कै संग प्रगट सुज्ञान साध कै संग बुझ प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा अंबर न कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिला साध कै संग सदा प्रफुल्ल साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहूं तावै साध संग अस्तित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाना साध वटाई नानक साध प्रभु बन आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग वसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधार साध संग साजन मीत कुटम निस्तार साधु कै संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्व थान गम नानक साध कै संग सफल जन्म साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पय आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जेता सुनह तेता बख्यान है साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उजते ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद न पाई इस लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै कस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राज रंग को लाग तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक जो बसा को खोदय को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लाग जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तरु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बस प्रवसंग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी क्या हो चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओहो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रय रूप न पेख्य नेत्र सादकी टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा सबते जाने, आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर। मन की वासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। वैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की मारते हुए पिन कर्म करत हो वह नेह कर्म, तिस वैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। मंतन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओह वैसनो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मनते बिनसा सगला परम कर, पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पाप अमल खोए, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मंथन अर्प बिसन पीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म है सुध है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून न आवे। वेद पुराण सिमृत पूजै मूल, सुख मह जान है स्थूल। चहु वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मह जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उर तार, पस प्रेत मुगद पाथर को तार। सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिला जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस न दे आया, दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास तर गह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी पड़े। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत नानक, ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग। पसरे हो आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। सलोक उस्तत कर है अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पहे तीर्थवासी, कई कोट वन ब्रह्म है उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी शुरू होते। कई कोट आत्म त्यां तौर हैं, कई कोट कब का विचार हैं। कई कोट नवतन नाम त्याव हैं, नानक करते का अंत न पाव हैं। कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंधा ज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेगातम निकोर। कई कोट पर दर्ब कोहि रहें, कई कोट पर दुख न करहें। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश प्रमाहे। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससिर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे। कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सबते निर सबहूते दूर,
नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहुजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे। नानक सब किस प्रभ के हाथे, कई कोट पए बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहु पात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, दिन होत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहार है एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पय सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर।

नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करावन करने जोग जो तिस पावे सोई होग। खिन महता पुता पनहारा अंत नहीं किछ पारा बारा। हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देख अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई। प्रभ पावे मानुख गत पावे। प्रभ पावे ता पाथर तरावे। प्रभ पावे बिन सास्ते राखे। प्रभ पावे ता हर गुण पाखे। प्रभ पावे ता पतित उधारे। आप करे अपन विचारे दुहां सिरियां का आप स्वामी। खेल बिगस अंतर जामी जो पावे सो कार करावे। नानक दृष्टि अवर ना आवे। कहो मानुख ते क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब किछले जो तिस पावे सोई करे। अनजानत बिख्या महरचै जे जानत अपन आप बचै। पर में भूला दह दिस्तावै निमक माही चार कुंट फिर आवै। कर किरपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले। किन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृश्य कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जाको अपनी कर बख्शीस ताका लेखा न गण जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फुनतियो। कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊभ आकाश प्याल। कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार। कबहू नृत्य करै बहु पांत कबहू सोए रह दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल। कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा। कबहू अपकीर्त मह आवै कबहू भला भला कहावै। ज्यों प्रभ रख तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह। कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन तारी लावे ध्यान। कबहू तट तीर्थ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमै परमिया। नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावै। जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संगत एहो पावै उस अस्थान ते बहर ना आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग सदा बस है पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन प्रमावै। तन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर किरपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै। तनवंता हुई कर गरबावै तृण समान कछ संग न जावै।
ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਕੂਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਤਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਿਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪਸ ਪੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਂ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪ ਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਪਟਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸਹਿ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਕੈ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਕੋਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਯਾ ਪਾਰ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ੍ਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾ

आपन किया कछु ना होए, जे साओ प्राणी लुचै कोए तैस बिन नाही तेरा किच काम। गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल कट सो है। धनवंता होए क्या को गर्भ, जा सब किच तिसका दिया दरबै।

सब किछ तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल करनी, कर कि

जप जप जीवै नानक हर नाउ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकास पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब

सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साधकै संग परे सरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग बड भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवकी नो सदा निहाल बंद

भगत जना के प्राण आधार, जो जो जो पैसो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।

केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब सेव सकत कहु हो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तर है, तब गमन निडर।

जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभु एका तब चितर गुप्त किस

किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है

मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन बेकत उतरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर्यामी पुरख प्रदान।

प्रकट व्याप रहे आ भगवंत, तरण माहि आकाश भयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बंदिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पाण पाणी बैसंत माहे, चार कुंट जैसे समाहे।

किया सब सत। तिस प्रभ ते सगली उत्पात, तिस भावता करे विस्तार, तिस भावता एक ओंकार, अनक कला लखी नह जाए। जिस भाव है जिस

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार सहस सियाणपां लख होहे ताइक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्म जे बुझै ताहो मैं कह ना कोय। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने नीसान गावे को गुण वडियाईया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खेहे गावे को जी लै फिर देहे गावे को जापै दिसै दूर गावे को वेखै हद राह दूर। कथना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार। फेर के अग्गे रखी है जित दिसै दरबार मुँह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानिए सब आपे सचियार। थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान। गाविय सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा इन पाने के नाए करी जे तिसट उफ पाई वेखा विणकर्मा के मिला लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चल सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस तीरथ जग ले जे किस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त दे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईसर बर्मा इंद सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठसठ का इशनान सुनया पढ़ पढ़ पाव है मान सुनया लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गा सुनया सिख पीर पातशाह सुनया अंधे पाव है राहो सुनया हाथ होवै असगाहो। नानक भगता सदा विगास
सुनया दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन सुरत हुए मन बुद्ध, मन सगल पवन की शुद्ध। मन मुह चोटा न खाए, मन जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन मार्ग ठाक न पाए, मन पत स्यों प्रगट जाए। मन मग न चल पंथ, मन धर्म सिति संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन पाव है मोख द्वार, मन परवार साधार। मन तर तारे गुर सिख, मन नानक पवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रदान, पंचे पाव हैं दरगह मान। पंचे सोह हैं तर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह कर विचार, करते कह करण नहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझ हुए सचियार, तबले उपर केता पार। धरती होर पर होर तिस्ते पार तल कमण जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया उड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाल एहो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई फली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे सही पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेच मल पक खाहे, असंख निंदक सिर करह पार। नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कह है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे। जेता कीता तेता नाओ, विणनावे नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। परिय हथ पैर तन देहे, पानी धोता उतर सखे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ तोए। परिय मत पापा कै संग, ओ धोपै नावे कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ल जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो। तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ।
ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣ ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰੇ ਅੱਖ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਗ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਿਸ ਅਠਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ ਅਸਰੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੀ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਅਥੈ ਵਹ ਪਵਹ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀ ਸੁਰਹਿ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਊਚਾ ਥਾਉ ਊਚੇ ਉੱਪਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ਇਹ ਵੱਡ ਊਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤੇ ਅਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮੌਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕਈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖ ਹੈ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖ ਹੈ ਬਰਮੇ ਆਖ ਹੈ ਇੰਦ ਆਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖ ਹੈ ਈਸਰ ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ ਆਖ ਹੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ ਆਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀਅਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇੰਦਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ
गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावहि वीर करारे।

रुचि नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करह विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दो एकार चलाव है लिखे आव है भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उन्ना नदर न आवै बहुताय हो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एक बार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी भो लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस एतराहे पत पवड़ियां चढ़िए होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण ना जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उतै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का को करम केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते बरमे काड़त घड़ी है रूप रंग के वेस केतियां करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां वाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद श्रम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता कियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन महराम रहया पारपूर तिथै सीतो सीता महमा माहि ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लोक करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर पांड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो आकार जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार ओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िय शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता।

0: उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं चप छंद त्व प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात न हिंजहे, रूप रंग अर रेख पेख कूस कह न सकत कहे। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय। कोट इंद्र इंद्रणा इंद्राण शाहे शहान गणि जय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत। कुजंग पर्यात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अडाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाधे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सोएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्गाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वपूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देव नमस्तंग अपेव नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुवन्मे नमो सर्वगोने नमो सर्वपोने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत अबंधे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले। चाचरी छंद त्व प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अधे है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिपर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है। भुजंग पर्यात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो राध नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ती विभूते कलंक मिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम विरधे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघहर्ता परम परं परमेश्वरं कोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोको रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्ववरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अखिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल पोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं उगता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा वसा होय फैले हो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पास सो जान नहीं कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मन विहीन चक्कर बकर फिरा चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विस्वरच्यो स्वयंभव गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंगराग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नित पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना वही बहु चित मधुपार छंद तो प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु शाहन शाहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म आदिरस्य तर्म सर्वापर नाढ्य अंडन बाढ़ चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग नामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद ना सत्र ना मित्र ना परमंग ना पित्र ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाये ना चित्र ना मित्र परे हैं पवित्र प्रीति स अधि स अदृश्य अकृष भगवती छंद तो प्रसाद कस्ते क्या छिज देस क्या पिज पेस क्या गंज कर्म क्या पंज परम क्या पिज लोक क्या दित सोक क्या अवधूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपहो अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बैब है के गै बुल गैब है के अफुल गुना है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पौन के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन अल वजू है तमाम अल रुजू है हमें सुसलाम है सली कुतमुजाम है गरीब उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू अल निधान है अरीफ उल अजीम है रजा एक यकीन है अनेक उल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुराग्य त्रिपुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथुअल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है परजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुक्त अनूप है चातरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेक है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अपक्त हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलिख हैं अधिक हैं अलेख हैं अपेक हैं अडाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगम्भ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद तो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद तो प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनुल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी दिहंद हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गरी बुल की राज है, गरी बुल निवाज है, हरी फूल शिकन है, हेरा सुल्फिकन है, कलंक प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाइक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकं प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमें सुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेसुल अलेख है, हमें सुल अपेख है, जिमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुपार छंद त्व प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुनगन मुदाम, अरपर अगंज हर नर प्रबंज, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड पर नर अमंड, अनुपव अनास, मुन मन प्रकाश, गुनगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अंशज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस्विस अपंड, जल थल महंत दिस्विस बेअंत, अनुपव अनास, तृत तर तुरास, आजान बाहु एक सदा हो, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अंश जगात आजज न बात, अंश अंज गात अनरंज बात, अन टुट पंडार अन ठट अपार, आडीठ धर्म अत टीठ कर्म, अन ब्रण अनंत दाता महन, हर बोल मना छंद तो प्रसाद, करुणालय है अरकालय है, खलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्व उबारण है, चित के तरण है, जग के कर्ण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजप्पा जप है, अथप्पा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंभर है, करुणालय है, निपनायक है, सर्वपायक है, बहुपंजन है, अर्गंजन है, रिक्तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग पर्यात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग काम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पोज पोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते, कलंकार रूप कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक श्री छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनासकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाढ़ अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, नारागे नारंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल परनामे, समस्तुल परनासे, अगंजुला नामे, समस्तुल निवासे, निकामंग विभूते, समस्तु स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सुतर्मंग विभूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करिमुल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब विभूते, गजायब गनीमे, हरियंग करियंग करिमुल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰ ਅਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਧਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਖੁਰੰ ਸੇ ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ
1: ਇਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾ ਗਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ।

सो संजम नेमन एक विशेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सुबान के पेख है, पावन हार जति जतार, सब सब 4000 के देख है, श्री भगवान पजे बिन पू

जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव निन्न साचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जितै जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे।

सुखी वसै मोर परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आय संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें

का द्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पचा श्री अस्तुज जो करी हो रचा राख लिहो मुरा कनुहारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता।

मुसलमान की एड़े पे कुम्हार घट भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोए बपरे चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जन करता है कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर कने न पायो।

होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा हो। जात मह जो जोत मह जाता।

ललमाला तिलक ललाटंग धोती वस्त्र पाटंग जय जान ब्रह्म कर्म सफो कुट निश्चो कर्म कौ नानक ने चो त्यावै मिन सतगुर वट न पावे पौड़ी।

चटिका तेड़ धोती कखाई हथ फिर जगत कसाई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश तानले पूजे प्राण भाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना।

करम धर्म किछ उपज ना आयो, नै उपजी निर्मल करनी। छाड़ सियानप संजम नानक लागो।

गत पाव है सुख सहज अनंदा, काटे जम के फाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचार्यो, हर संत जना पह आहा। तिना प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। से बडभागी से पतवंते, से पूरे साहा। सुंदर सुगड़ स्वरूप

दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिसै सो छारा रहाओ जिन किया तिस सिमर परानी जियो प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटा वह मर जन्म है।

भयो अनुग्रह मिट्यो मूर्चा, अमोल पदार्थ लाध्यो बलिहारै नानक लख बेरा, मेरे ठाकुर अगम

सुंदर सुगड सूर सो बेता, जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना, बहुड़ न

यह टहल मुहि करना। बिकसै मन हुवै परगासा, बहुर न गर्भै परना। सफल मूरत परसो संतन की, यह

जन्म जन्म के किल बिखना सह कोट मज्जन इसनाना। नाम निदान गावत गुण गोविंद लागो।

छोड़ न कतहु जाता रहाओ। बैठत हर हर सोवत हर हर, हर रस भोजन खाता। अठसठ तीर्थ मज्जन कीनो, साधु धूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजिया, जिन तीनों सौत विधाता। सगल समूह

हमरा गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजी, मुए दुष्ट जो खया, पर उपकारी सर्व सदारी, सफल दर्शन सहजया, कहु नानक निर्गुण कौ दाता।

संत संग नित रहिए, एक आधार नाम धन मूरा, अनद नानक इहु लहिए। राग देव गंधारी महल्ला पंजवां, घर तीजा

गुर चरनी तो उतरी सगल दुराचै देव गंधारी पंजवा अमृता प्रै बचन तुहारे अत सुंदर मन।

बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के, रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद भीतर, सास गिरास उचारियो। नानक ओट गही जगदीश।

जासन बासन सहज केल करुणा में एक अनंत अनूप ठाऊ रिद सिद्ध निद कर तल जग जीव।

अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत रहाओ, मेरू मेरू सबै कहत है, हित स्यो बाधे उचीत, अंतकाल संगी नह को, यह आश्चर्य है रीत, मन मूर्ख अजहू नह।

नाम अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवाते राम पतित पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहु कुंडी चहु जुग जाते राम हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर सरना

नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे एक रंग नाना बेद किनो बेसुथार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चालित करे खिन माहे पूर रहे ओ पूरन सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घाट तिसके सब तिसके ठाओ जाप जाप जीव हर नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनम ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे आपने नाम लाए नानक चौथे पाद मैं सो जन गत पाए रूप सत जात सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब महे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुख दाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोई नाम जप तो ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मेत गत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवर ना बूझ करत बीचार करते की मेत न जाने किया नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया बेसमन बेसम पहे बेसमाद जिन बूझिया तिस आया सुवाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब तहरी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपौ होए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई बूजे बूजन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जन संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सास सास सुमारे अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख ताकि गत मित कोई न लख है प्रभ के सेवक कौ को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपने सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल राख पासम कर लस्कर कोट लाख जिसका शासन काढ़त आप ताक राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु पांत तिसके कर तब ग्रथे जात मारे ना रखे अवर न कोए सर्ब जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत एहो मन तन त्रपी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै साद काम बोलो जस जेह बाद न रात प्रभ अपने जन की नी दात करै भगत आत्म कह चाए प्रभ अपने स्यों रह समाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से ही जान पूरे मन मेरे तिन की ओटले मन तान अपना तिन जान दे जिन जान अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
तिस की शरण सर्व सुख पावै, तिसके दरस सब पाप मिटावै। अवर स्यान पसगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान ना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजाओ साधु पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिस का नाउ, तिस कै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सुवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस को कार कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेह कामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी। अपने कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन माने, सो सेवक पर सो सेवक परमेश्वर की गात जाने। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जान जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं काश परम। सहस्यान पलाया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे। सुनकर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अख्याओ जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जेह बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक। काहू बोल ना पौचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनेक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै। साद बलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया तै संग न लेप, मन में रख हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तापत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूरन उपदेसे। पाओ चूका निरपाओ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका साथन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी काल तारी, अनेक बार नानक बलहारी। सलोक साधना चालै बिन भजन, बिख्या सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करहु विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद में उरतारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हर वथ। ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस रखु मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कूंठ उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुबा को करै भली करनी, सा सुबा भज हर की सरनी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्ब निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन प्रबुद्ध हर कै नाए, दह दिस धावत आवै ठाए। ताको बिघन न लागै कोए, जा कै हृदय बसै हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भव बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित घर जाए बसै अबिनासी, कहो नानक काटी जाम फासी। तत विचार कहै जान साचा, जनम मरै सो काचो काचा। आवागवन मिटै प्रभ सेव,
आप त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सुतीर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटुंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिसथार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असुवारी झूठा डंप झूठ पासारी जन दिए तिस बुझे ना बेगाना ना बिसार नानक पशु ताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहो अवरा नाम जपावहो सुन तो कह तो रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल शाड सियान पसगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी सांच करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्ब निरंतर एको देखो कहो नानक जाके मस्तक लेखो एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एको एक हर आप पूरन पूर रहो प्रभ व्याप अनेक विस्थार एक ते पय एक आराध पराशत गए मन तन यंत्र एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत प्रभ आया पर्यात सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो धूर पार ब्रह्म सदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नतनीत एक ऊट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जान त्रिपता ने पूरन पुरख नहीं डोला ने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाऊ साध कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन निविलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जान को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सद संग हजूरी जिस का सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपुरै तत इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया सा जन संत करो ए काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी शार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दी जय कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आद पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी
जब अकार एकाश न दृष्टिता पाप पूर्ण तब कहते होता जब धारी अपन सुन सुमात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सूख कहो किसे व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ के सुहोवत भरम अपन खेल आप वरती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हार अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव साकत कहो के तठाए जब आपे आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन का तो डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त कैस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छठे कौन बंधन बादे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन तृपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जह सर्वकला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कहा को चीन जब आपन आप उरतारै तौ सगन आप सगन कहा विचारै जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिय चेरा बिसमन बिसम रहे बिसमाद नानक अपनी गत जानहु आप जह अशाल अशेद अपेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंतो किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथ है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहु गुण मैं तीनों विस्तार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तव नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पसार संत प्रताप दोहु पाख का आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतुक करै आनंद चोज आपे रास भोगन निर्जोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जात सुभावै तां सृष्टि उपाय आपने पौणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मन हो बेसारै तिस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बे अंत अपार नानक दास दा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जामे रहे ब्याप प्रतपालै जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न ब्रति जाए सेवक को सेवा बनयाई हुक्म बूझ परम पद पाई इस दे ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निर्वैर आन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हार प्रभ आपे मेले
साध संग मिलकर हो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तात करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ, आठ पहर प्रभ पेखू नेरा, मिटाय अज्ञान बिनसय अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, हलत पलत दोए लिहु सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसाय तिस साच परिखिया, मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहो जाए, साच वापार करो वापारी, दरगा निभय खेप तुम्हारी, एका टेकर को मन माहे, नानक बहुर न आवे जाए, तिस ते दूर कहा को जाए, उबरे रखन हार ते आए, निरपाओ जपै सगल पाओ, मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पौचन हार, सर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामे पुरख प्रधान, जिस मन बसै सोहोत निहाल, ताके निकट न आवत काल, अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास, अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समिग्री एक सकाट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टा आहे, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तह नाद, कहन ना जाई अचरज विसमाद, तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सोजी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत, तरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बान तेन पर्वत है पार, ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंत्र माहे, चार कुंड तह दिस समाहे, तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससी अरसूर नखियत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल ना कबहू डोले, सर्व कला कर खेलै खेल, मोल ना पाइय गुणे अमोल, सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, धार रहे स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मैं इहो विश्वास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत पत, तिस भावै ता करे विस्थार, तिस भावै ता एकंकार, अनक कला लकी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर, अंतर गात जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखन हारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सबके मध हलिपतो रहे, जो किश कहना सो आपे कह, आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै तां लै समाए, इस ते होए सुना ही बुरा, उरै कहो किने कछ करा, आप भला करतूत आत नीकी, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तां सोजी पाए, तिस काकिया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक इहो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का इह सुआउ, जन कै संग चित आवै नाउ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाउ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ, अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद,
आस अनेतो त्यागु त्रंग संत जना की दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन की पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाजो परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सोनत कमावत होत उधार आप तरह लोकै निसतार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सारण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्ब इच्छा ताती पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए अस्थान बहुर न होवै आवन जान हर धन खाट चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता साम दर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने इहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपाते जमते छुटाए जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी सोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकी सोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाईयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरत स्वामी तो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब कुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनहो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो
ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹੇ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

इस बच्चे नू विछड़ी हुई रूह नू सकून शांति दे सके। बच्चा अजय सिंह सैनी, तुसी जपोगे तुहाडा साडा भी भला होवेगा। महाराज कह रहे ने जिथे किसी की भी पहुंच नहीं उथे नाम की पहुंच है, बंदगी की पहुंच है। जह पेंडे महा अंध गुबारा, वो पेंडा बड़ा औखा है। गुरु अर्जन देव जी, जह पेंडे महा अंध गुबारा, पर कहते ने जेड़े नाम जपते ने ना हर का नाम संगुजियार, मरण तो बाद नाम रोशनी बन के। जे तेरा जप तप बहुत होवे ते फिर ते फुल्लां दी वर्खा करके लैके जांदे ने देवी देवता। तुहानू बेनती है, बच्चे अणजाण होंदे, महाराज दा वचन है मेरा नहीं भुल्लण अंदर सब को। जे कोई दावा करे मैं कदे कोई गलती नहीं कीती, सब तो वड्डा झूठ। महाराज कह रहे ने भुल्लण अंदर सब को, कौन है जेड़ा कदे भुल्लदा नहीं। अब भुल गुरु करतार, परमात्मा बाबा नानक है जिहड़ा किसी का कदे माड़ा नहीं करते, भला ही भला भुलदे भी नहीं। सब का तोल तोल के देण वाले, सब का फिक्र करन वाले। सो बेनती है भैणा नू, वीरां नू, बजुर्गां नू, मां बाप नू, एक बारी बोलो सारे, इनाम ने सुख वरता देना।

एक बारी सारे कह दियो, क्योंकि रावण दे 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाते। कदे भी हंकार ना करिए, निम्रता विच रहिए, प्यार करिए एक दूजे। इस परिवार का प्यार वेखो, देखण नूं मिल रिहा अज दूरों नेड़े सारे आए ने दुख वंडाउण वास्ते। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, रावण दे 1,00,000 पुत्र सन ते 1,25,00,000 पोतरे सन। होया कि तेह रावण घर दिया ना बाती। अज कोई दीवा जगाउण वाला नहीं, जिन्हां ने नाम जपया, सेवा कीती, सिमरन प्यार ही प्यार वंडिया, महाराज दे गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन ने, साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो, वो मर भी जाते ने उन्हां दे नाम दे बंदगी दे दीवे जगदे ही रहिंदे ने, लंगर लगदे रहिंदे ने, कीर्तन होंदे रहिंदे ने। ऐसी कमाई आपां करनी सारी।

0: सगल सामग्री तुम ही जानी नानक दास।
1: बोलो जी, बोलो जी। अरदास को अंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई प्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जे जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरय कर नव निदावैताए सब थाई होय सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होय सहाय। दसा पातशाहियों की जोत गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड के छकिया देग चलाई देग वहाई देख के अंडिट किया तिना प्यारियां सच्यारियां की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सी जिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल तन चिरवाए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुरबानियां कीतियां सिखी केसा स्वासा संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रहत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी, बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा आप अकाल पुरख वाहेगुरु। हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नु भी छोड़िया गया तिना की सेवा संभाल दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी को बख्शिश करो निमाणिया दे माण नेताणिया दे तां नियोटिया दी ओट गुरु गरीब निवाज धन गुरु नानक साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी दाता जी आप जी के चरणा कमलों में अरदास बेनती है। जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदी उठी जाए दे महा वाक अनुसार बच्चा अजैस सिंह सैणी संसार की यात्रा कर दिया महाराज जी तुहाडे पाणे अंदर तुहाडे चरणा विच जा विराजिया सच्चे पातशाह तिना की अंतम अरदास तिना दा शरीर अगन भेट करन तो बाद गुरु घर विखे महाराज संगतां ने हाजरियां भरियां परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ कराए सन संपूर्णता हुई उपरंत मेन हाल विच दीवान सजाए गए हैं। दाता जी विछड़ी होई रूह नूं परिवार की इच्छा है चरणा विच थां बख्शिश करियो दाता जी पिता जी सरदार दलजीत सिंह सैनी माता सुरजीत कौर सैनी ब्रदर अमरदीप सिंह सैनी समूह परिवार तुहाडे चरणा विच हाजरियां अरजोई लैके खलोता है सच्चे पातशाह भाणा मनण का बल बख्शिश करो तुहाडे नाम का आसरा बन जाए तुहाडी बंदगी कीर्तन का आसरा बन जाए सच्चे पातशाह जी मेहर करियो सारिया संतां ने मिल बैठ के हर जस कीर्तन नाम जपया सब की हाजरी प्रवान करियो सब के घर नाम का प्रताप बनायो आपसी तालमेल बना के रखियो घर सुख वरतायो बच्चा अजैस सिंह सैनी कोई भुल चुक संसार विच विचरदिया हो गई होवे महाराज जी बख्श लेना अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल फेरा कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नवेरा महाराज जी चरणा विच थां बख्शिश करियो महाराज जी पिछे परिवार की पालना करियो रखवाली करियो हौसला बख्शिश करियो दाता जी इस वेले परिवार वालों कड़ा प्रसादी देग हाजिर है भोग लग्या प्रसाद जो भी छके सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जपे ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।